कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

0: हेलो
1: हेलो,
0: मेरे साथ डांस करोगे?
1: नहीं।
0: ए, जरा मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करो। अब तुम वही करोगे जो मैं

यदि हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करते तो सब दोस्त बन जाते हैं। हम डेवलप करो या मत करो, डेवलप करोगे तो आप भगवान हो जाओगे, लेकिन डिस्टर्ब नहीं करें तो दुश्मन नहीं बनोगे। कैसे उन्होंने भगवान महावीर की अनुभूति करी कि सबसे भयंकर जो अहंकार है उनके लिए शुभंकर हो गया। तो क्या अनुभव करा उन्होंने भगवान महावीर को, किस रूप में अनुभव किया, और उस अनुभूति को यदि हम थोड़ा सा भी चख ले, थोड़ा सा भी चख ले, तो हमारी एक यात्रा शुरू हो जाएगी सुधर्मा स्वामी बनने की। और यदि आप अपने घर के सुधर्मा स्वामी बन गए, यदि आप अपने समाज के सुधर्मा स्वामी बन गए, यदि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के सुधर्मा स्वामी बन गए, तो आपको देख करके लोगों को तीर्थंकर महावीर की याद आएगी। और यही सही इसमें कसौटी होनी चाहिए कि आप दिखे और आपका बाप याद आ जाए। आपका व्यवहार देखे और आपका समाज याद आ जाए। आपका देश याद आ जाए। ये पहचान होनी चाहिए कि जिनके प्रति मेरी श्रद्धा है मुझे देखने के बाद उनकी याद आनी चाहिए, मैं नजर नहीं आना चाहिए। और जब तक मैं नजर आता हूं तब तक मेरा अहंकार जिंदा है। गुरुदेव के अनंत प्रवचन में एक रेफरेंस गया है, एक अच्छे वो पहुंचे हुए योगी के पास, सन्यासी के पास एक मेरे जैसा तुम्हारे जैसा व्यक्ति पहुंचा, और वो योगी कहते थे कि जहां देखो वहां प्रभु दिखते हैं, जहां देखो वहां प्रभु दिखते हैं, जहां देखो वहां प्रभु दिखते हैं। तीसरे कहां प्रभु दिखते हैं, मुझे तो कोई प्रभु दिखते ही नहीं, आपको कैसे प्रभु दिखते हैं। तो उस योगी ने उसके तरफ देखा और उसको एक आईना दिया, मिरर दिया जो हम घर में लगाते हैं। बोले इस मिरर में देख क्या दिखता है तुझे, देखा मिरर में क्या दिखेगा, स्वयं का रिफ्लेक्शन आएगा। फिर योगी ने एक काम किया, वो मिरर हाथ में लिया, उसके पीछे लगे जो मर्क्यूरी थी पारा था वो पूरा क्लीन कर दिया, और फिर उसके हाथ में वही ग्लास दी। बोले अब देख क्या दिखता है, बोले वो पेड़ दिखता है, वो सूरज दिखता है, वो दीवार दिखती है, वो दिखती है, ये दिखती है। बोले अब तू नहीं दिखता क्या, बोले नहीं मैं नहीं दिखता हूं। बोले क्या हो गया, बोले आपने वो पीछे का निकाल दिया ना। तो सन्यासी ने उसको कहा, जब तक तेरे मन में ये मान की मर्क्यूरी लगी हुई है तब तक तुझे तू ही दिखेगा, ना गुरु दिखेगा ना प्रभु दिखेगा। और ये सुधर्मा स्वामी, आपको सोचना चाहिए कि इंद्रभूति गौतम उस समय है, जम्बू स्वामी जिस समय, उस समय इंद्रभूति गौतम है, और इंद्रभूति गौतम केवल ज्ञानी है, और इंद्रभूति गौतम परमात्मा के बहुत क्लोज शिष्य। उनकी हिस्ट्री क्या है, इंद्रभूति गौतम बिल्कुल नियरेस्ट कोई है तो कौन है, इंद्रभूति गौतम है।

लेकिन जम्बु स्वामी इंद्रपति गौतम को पूछने नहीं गए कि बताओ कैसे भगवान महावीर, वो सुधर्मा स्वामी से पूछते हैं, आपके पास यदि ऐसे दो व्यक्ति आ जाए, एक परम ज्ञानी है अनेक थोड़ा कम ज्ञानी है, तो आप सलाह लेने के लिए किसके पास जाओगे? परम ज्ञानी के पास। मुझे जम्बू स्वामी ने अकल कम है तक से, जम्बू स्वामी को अकल कम है, अरे वो परम ज्ञानी होगा लेकिन उसके अंदर में परमात्मा का स्पंदन है क्या कि उसमें उसका ही स्पंदन है, उसका ही मनोयोग है, उसी का वचन योग है, उसी का काया योग है। सुधर्मा स्वामी में स्पंदन भगवान महावीर का है, सुधर्मा स्वामी के मन में सुधर्मा स्वामी का मन है ही नहीं, और इसलिए वो समग्रता से भगवान महावीर की अनुभूति को अभिव्यक्ति दे पा रहे। क्या तीर्थंकर महावीर की वीर्य है, क्या शक्ति है, मई मजम्मी ठिये नगेंदे सुमेरु पर्वत केंद्र में है, पूरे मध्य लोक का केंद्र कोई है। आचार्य सूत्र की टीका शलंकाचार्य ने तो और गहरा उत्तर दिया कि सुमेरु पर्वत क्या है, तो बहुत ले जहां से दिशा शुरू होती है, जहां से एंगल शुरू होते हैं, क्योंकि वो सुमेरु पर्वत कहां है, पूरे मध्य लोक के केंद्र में, मैं ये मझम्मी मझम मध्य में है। आप भगवान महावीर के साथ जुड़ना चाहते हो तो बाउंड्री पर हो कि सेंटर में हो, ताकत कहां होती ज्यादा है, सेंटर में या बाउंड्री पर? बाउंड्री पर एफर्ट्स बहुत लगते हैं लेकिन ताकत सेंटर में होती है। पहले के वैद्य पेट की बीमारी को ठीक करने के लिए दवा नहीं देते थे, वो नाभि को ठीक करते थे। किसको ठीक करते थे? बस वो नाभि को देखते थे। अभी भी एक दो वैद्य मिले मुझे, वो नाड़ी नहीं देखते, उसने नाभि देखी मेरी, नाभि को हाथ लगाया। मैंने पूछा ये क्या करे तुम, बोले सारी 72,000 नाड़ियों का रिमोट कंट्रोल वहीं पर है, बोले क्योंकि सेंटर में। योगीराज श्री हंसमुकुंड जी महाराज साहब नाभि नंदन बनाते थे, क्या बनाते थे? नाभि नंदन। बहुत अच्छी कंसेप्ट थी उनकी कि नाभि नंदन कौन है? ऋषभदेव है, और तुम्हारी इस नाभि का नंदन स्पंदन पता चल गया तो तुम ऋषभदेव हो गए। वो शुद्ध उनका था, और इसलिए वो कहते थे सुनो अपने श्वास के नाभि के स्पंदन को सुनो, मही मजे में ठीक नगेंदे, और मस्ती में बोलता मैं, है ना, मुझे लग रहा है कि मैं स्वयं के साथ कुश्ती करते बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा शांति से प्रेम से सुनते हैं, उसका कारण अलग है। आपको लगता है कि मारा सब द बेस्ट बोल रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि मैं पूरा नहीं दे रहा, पाऊ ग्रिट नहीं दे पा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं लेकिन गुरुदेव की भूमि पर बेस्ट ही देना चाहिए, सेकेंडरी नहीं देना चाहिए, ये मेरी भावना रहती है।
मह्यम ज मीठी अनगिनती, वो सुमेरु पर्वत सेंटर में शक्ति का केंद्र महत्वपूर्ण होता है, और जो केंद्र में पहुंच गया वो सब पर राज कर सकता है। बाउंड्री पर तो सीमा रक्षक रहते हैं, बाउंड्री पर सीमा रक्षक रहते हैं, केंद्र पर सीमा रक्षक नहीं रहता है, केंद्र पर राजा रहता है। आपके केंद्र में कौन है? जो आपके केंद्र में होगा वही आपके जीवन का राजा है। सुदर्शन स्वामी के केंद्र में भगवान महावीर है, राजा सैनिक के केंद्र में भगवान महावीर है, श्री कृष्ण वासुदेव के केंद्र में अरिष्ट नीमी है। अब जरा राजा सैनिक के केंद्र में भगवान महावीर है तो नरक गति का आयुष्य बांधने के बाद भी वो तीर्थंकर हो रहे, क्योंकि केंद्र में कौन आ गया? भगवान महावीर आ गए। ये जो वीरत्व का संपुट चल रहा है, और इसके बाद जो वीरवाणी का संपुट चलेगा वो किस लिए? कि तीर्थंकर महावीर तुम्हारे केंद्र में पहुंच जाए, तीर्थंकर महावीर मेरे केंद्र में हो जाए। जब तक वो बाउंड्री पर है तब तक कभी भी चिटक सकते हैं। वही मजम मीठी है नगेंदे, वो सुमेरु पर्वत मध्य लोक के केंद्र में है, वैसे तीर्थंकर महावीर की पूरी शक्ति विश्व के केंद्र में है, पूरे विश्व के शक्ति का स्रोत, तीर्थ बनाने का स्रोत कोई है तो तीर्थंकर महावीर है। वो सुमेरु पर्वत है, और जब तक उस केंद्र में नहीं पहुंचेंगे तब तक आप किसी को तीर्थ बना ही नहीं सकोगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज मैं मेरी रो में नहीं बोल रहा हूं, तुम्हारे साथ बात करके बोल रहा हूं। अपने अपने संतति को बढ़िया बनाने के कितने प्रयास करें? बहुत प्रयास करें, हाथ ऊपर करो, कौन कौन सक्सेस हुई हो? क्यों? कि तुम्हारे सेंटर में भगवान महावीर नहीं है। तीर्थंकर महावीर सेंटर में आ जाए, तीर्थंकर सेंटर में आ जाए तो बेड़िया यू खुल जाती है। आचार्य मानते हैं कि बेड़िया खुलनी पड़ी, कहना पड़ा कि खुल जा रहे कि खुल गई। क्यों? उनके सेंटर में कौन आ गए? ऋषभदेव आ गए। और जो सेंटर में होता है वही रूलर होता है, वही उसी का राज चलता है। बाउंड्री पर रहने वाले को राज चलता ही नहीं है। आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने तो इतनी चुपती हुई सच बात बोली,

रामेश्वर तो शार्पनेस वाढवत चालला आहे. अगोदर शार्पनेस भरपूर आहे ना, तो अजून त्याला पिंकवर नेतोय. आकर्णितोपी महितोपी निरीक्षितोपी हो तीर्थंकर परमात्मा, मैंने आपको सुना, मैंने आपके दर्शन करे, मैंने आपकी पूजा करी, मैंने एक काम नहीं किया, भक्ति पूर्वक आपको हृदय में स्थापित नहीं किया. मैंने आंखों से दर्शन करे, मैंने कानों से आपको सुना, हाथों से आपकी पूजा करी, लेकिन दिल में आपको नहीं रखा, भक्ति से नहीं रखा. नूनर्न चेतसी मया विद्रुतो सी भक्त्या, भक्ति से मैंने हृदय में धारण नहीं किया. जातोस्मि तेन जन बांधव दुख पात्रम, मैं जो दुख का कारण बना हूं, मैं जो दुखी हूं, उसका इतना सा कारण है कि हृदय में आपको नहीं रखा. हृदय में यदि आप होते तो मेरी हर क्रिया पूर्ण हो जाती. आप हृदय में नहीं हो इसलिए मेरी हर क्रिया शून्य हो गई है. और निश्चित रूप से कह सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं कि हम सभी की अनुभूति यही है कि हमारी सारी क्रियाएं शून्य हो गई है, पूर्ण नहीं हो पाई. और उसके लिए हम कारण देखते हैं पांचवा राज, पंचम कांचाल्य ना है, अभी वज्र ऋषभ नारायण सवनन को नहीं है ना है, अभी उतना ज्ञान को नहीं है ना है. और सिद्ध सिंह दिवाकर कहते हैं सब फालतू के रीजन है, सब झूठे कारण है, मूलभूत रीजन कोई है तो मेरे केंद्र में आप नहीं हो. यू कैन चेक कौन है आपके केंद्र में, आप पर कौन राज करता है. जो आप पर राज करता है वो आपके केंद्र में है, जिसका हुकुम चलता है वो आपके केंद्र में है. सेंटर की पावर को चैलेंज कोई नहीं दे सकता है. केंद्र की सत्ता, ये देश गुलाम हुआ इसका कारण था कि केंद्र की सत्ता कमजोर हो गई. बड़े बड़े दिग्गज राजे थे उस समय भी, जब मुगलों ने आक्रमण किया, दिग्गज राजे थे, लेकिन वे अपने ही सीमा में थे, देश के केंद्र में नहीं थे. सारे राज्यों को जो जोड़ करके रख सके उसको केंद्र कहते हैं. मैं तो खोज रहा हूं कि आपके परिवार का केंद्र कौन है, और मुझे निश्चित रूप से पता है कि मेरा पूरा संघ, मेरा पूरा समाज केंद्र शून्य है. Why Christian is powerful? Why Muslim is powerful? Why Sikh is powerful? Why we are very weak? They have a center. They have a capital. Vatican City is capital. Makkah Madina is capital. Amritsar is capital. Which capital? हमारा क्या कैपिटल है, हम ही कैपिटल है. इधर दे सुधर्मा स्वामी इसलिए
जम्बू स्वामी के शिष्य बन पाए, सुधर्मा स्वामी के शिष्य जम्बू स्वामी इसलिए बन पाए कि सुधर्मा स्वामी के केंद्र में भगवान महावीर है। हमारे केंद्र में कौन है? कल जिनेश्वरी का अधिवेशन हो गया और समर्पण चतुर्मास समिति के ट्रस्टी बाबू सेठ तो मुझे लगता अभी तक भी उससे बाहर नहीं आया। वो तो उस अधिवेशन से इतना प्रभावित हो गया, इतना भावीभूत हो गया कि कल उसका बहुत बड़ा सपना टूटा तो भी वो संभल गया। सेवन अक्टूबर को लेकर के उसने बहुत सपने देखे थे, लेकिन वो जिनेश्वरी के अधिवेशन ने ऐसी बारिश कर दी कि वो दर्द उसका ठंडा पड़ गया। और उनके केंद्र में कौन है? जिनेश्वरी के केंद्र में केवल भगवान महावीर उनके केंद्र में। पूरे वारकरी संप्रदाय के केंद्र में कौन है? पंढरपुर का विठ्ठल। और वो केंद्र में है तो चाहे दुष्काल गिरे, चाहे बारिश आ जाए, चाहे धूप आ जाए, चाहे सोने को जगह मिले या नहीं मिले, पाऊले चालली पंढरी जे वाटे कि केंद्र में कौन है? विठ्ठल है। क्या अहिल्या नगर के केंद्र में बीस अक्टूबर से महावीर आ पाएंगे? सवाल है मेरा। क्या आपके परिवार के सेंटर में महावीर हो पाएंगे? जिस दिन तुम्हारे परिवार के, समाज के, संघ के, सिटी में, केंद्र में, सेंटर में तीर्थंकर महावीर होंगे, उस समय तुम्हारे जिंदगी में अनर्थ और व्यर्थ होना समाप्त हो जाएगा। चाहे जितने प्रमाण खोज लो, जिन जिन व्यक्तियों के सेंटर में महावीर पहुंच गए उनका नरक भी उनको दुखी नहीं कर पाया। विरजन हो श्रेणी नरक में, लेकिन दुखी नहीं है। नरक में है दुखी नहीं है, और हम यहां पर होकर के दुखी है। कमाल हो गई यार बात। देवलोक में कई देवता दुखी है, देवगति में है। कहां है? देवगति में, लेकिन वहां भी लड़ते हैं। क्या आठों लड़ता लड़ता गया तो उठे भी लड़ से गया। अगर मैं जाता है जिक्र कि देवता जो है दूसरे देवलोक में जाकर के वहां के रत्न चुरा करके लाते। गजब है बाचो तो थोड़ा माथो कहीं देवता कमाल हो गया। कई देवता वहां से रत्न चुरा के लाते, कई देवता वहां के देवियों को उठा करके लाते। अब आठे उच्च उद्योग करते तो उठे भी उच्च उद्योग। तब जो वहां से कोई दूसरे के यहां से चुरा करके लाएंगे वे सुखी रहेंगे कि दुखी रहेंगे? यस। और जिसके सेंटर में महावीर हो जाए वो कभी अत्याचार कर पाएगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यदि केंद्र में महावीर आ जाए तो मन में महाभारत चल पाएगा? यदि महाभारत चल रहा था इसका मतलब क्या है केंद्र में? अरे श्री कृष्ण जी महाभारत के केंद्र में आ जाते हैं तो महाभारत का युद्ध हो पाता क्या? लेकिन उन्होंने क्या किया?
श्री कृष्ण को एक पार्टी में भेज दिया, नहीं वो पांडव के पार्टी में। समर्पण चतुर्मास को तुमने एक पार्टी में भेज दिया, अरे क्या है ये? मही मजमे ठिए नगिंदे पन्ना यते सूर्य शुद्ध लेसे। और जो केंद्र में पहुंच गया, पन्ना यते सूर्य शुद्ध लेसे, फिर उसकी जो लेशा है वो शुद्ध लेशा, प्योर नोबल, मनोरमे जोई अच्छी माली। अच्छी माली यानी सूर्य, अच्छी माली यानी क्या? सूर्य। और कैसा सूर्य बन जाता वो? मनोरम। क्या सुधर्म स्वामी बोलते भगवान महावीर को महसूस करते हुए, क्या शब्द दे रहे हो। चंद्रमा को मनोरम कहने वाले लोग मिल जाएंगे आपको कभी लोग। चंद्रमा बड़ा मनोहर है, कोई सूर्य को मनोहर कह सकता है? कह सकता है कौन का? और एक व्यक्ति ने कहा है, और एक व्यक्ति ने कहा है, ज्ञानेश्वर मौले ने कहा है, ताप विहीन मार्तंड। क्या? ताप विहीन मार्तंड। सूर्य का प्रकाश तो है लेकिन सूर्य का ताप नहीं है, और अपने पास सूर्य का ताप तो है लेकिन सूर्य का प्रकाश नहीं है, क्या करें यार? बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। ज्ञानेश्वर मावली उस सूर्य को देख रहे हैं कि जिसके पास प्रकाश तो है लेकिन ताप नहीं है, और हमको उसके साथ रहना पड़ता है कि जिसके पास प्रकाश तो नहीं लेकिन ताप है। किरा किरा करने संताप को नहीं, हाथ ऊपर पटापट, हेलो, मैं तो फक्त तापस बोल रही होती, संताप बोल रहा हूं। और ज्ञानेश्वर मौली उस व्यक्ति को देख रहे हैं, ताप विहीन मार्तंड, और सुधर्म स्वामी परमात्मा को देख रहे हैं, महसूस करे मनोरम अच्छे माली, मनोरमे जो ये अच्छी माली। गाएंगे एक बार

이놈 시리아 무슨 물이 많네. 물이 안에 bot. 시리아 안에 스리, 쇼바, 럭시미, 아이슈아리아. 문어름의 조이 아침하니. 이 마하비르 यदि आपको चाहिए तो केवल सुधर्म स्वामी दे सकते हैं. 이 수드르마 스와미의 니샤브도세, 악샤로세, 이 아파사테요. 이스코 툼 아감에 니 파사테요. 아프고 파타에 게? 아감 우스코 게테에, 조 티르탕카르 마하비르카 프라바찬 오타에. 티르탕카르케 프라바찬 코 아감 게테에. 에나? 프라바찬이 게? 티르탕카르케 와니. 아비 푸치 스룸 티르탕카르케 와니 에 게? लेकिन इसको आगम में रख दिया. स्विगढ़ांग सूत्र के छठे अध्याय में. अरे भक्ति ही शास्त्र बन गई जब सुधर्मा स्वामी की अनुभूति से प्रभु महावीर व्यक्त हो गए. ये आगम हो गया है क्या? ये भक्ति है. और भक्ति को देवर्देगने क्षमास्त्र बनने पूर्वाचार्यों ने सुधर्मा स्वामी की भगवान महावीर की स्तुति को कहा ही आगम है. और ऐसा एक महापुरुष तुम्हारे धरती पर जिसका आयुष्य पूर्ण हुआ, कवि कुलभूषण तिलक ऋषि महाराज साहब, उन्होंने पंच परमेष्ट के गीत गाए. नमो श्री अरिहंत कर्म को के अंत वासो केवल अवंत करुणा भंडारी. उन्होंने सवैया बनाई और जिसने जिसने सवैया सुनी उसने उसको आवश्यक सूत्र में डाल दिया. आवश्यक सूत्र क्या है? आगम. प्रतिगमन क्या है? आगम. एक व्यक्ति की रचना को प्रतिगमन सूत्र में समाविष्ट कर दिया. आप नहीं समझ पाए, अभी तक आप सुन नहीं पाए. कवि कुलभूषण श्री तिलक ऋषि महाराज साहब की रचना को पूरे स्थानकवासी समाज ने एक आवाज से, तुम दिल्ली जाओ कि पंजाब जाओ कि गुजरात जाओ कि राजस्थान जाओ कि एमपी जाओ. और उस समय कोई व्हाट्सएप नहीं था, सोशल मीडिया भी नहीं था और कोई मैगजीन भी नहीं था. उसके बावजूद पूरे भारतवर्ष में आज भी इतने संप्रदायों के झगड़े हैं. लेकिन चाहे ज्ञानगच्छा वाला हो चाहे साधु मार्गी वाला हो, प्रतिक्रमण में तो नमो श्री अरिहंत ही बोलते आज भी. कई संतों ने प्रयास किए कि हमारी सवैया चल जाए, नहीं चल पाई. क्योंकि कवि कुलभूषण के तिलक ऋषि महासभा के केंद्र में उत्तराध्ययन सूत्र था. डेली 3 घंटे उसकी आराधना करते थे और उससे जन्मी हुई रचना आगम बन गई. सुधर्मा स्वामी के अंदर से जो जन्मी वो भगवती आगम हो गई. स्विगढ़ांग सूत्र का छठा अध्याय आप पढ़ते हो ना, विरथिम छठम अध्यायनम. वो किसका छठा अध्याय? स्विगढ़ांग का. और ठीक है, पूछो भी को नहीं, पूछो भी को नहीं कि आगम तो उन्हें कहे ना. जीरम भगवान महावीर जो बोले उन्हें आगम कहे ना. ये तो सुधर्म स्वामी बोले, पिछले आगम क्यों कहे? जिसके केंद्र में प्रभु होते हैं, जिसके केंद्र में प्रभु होते हैं, जिसके केंद्र में प्रभु होते हैं, उसका हर वचन शास्त्र होता है, उसकी हर क्रिया पूजा होती है, उसकी हर सांस संगीत होती है, उसका हर कदम प्रभु भक्ति में किया हुआ नृत्य होता है. कि केंद्र में कौन है? हु इज योर सेंटर? प्रवीण ऋषि कह सकता है कि प्रवीण ऋषि के सेंटर में गुरुदेव है. और ये तो मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है.
કેને બી જાને પૂછેલા તે કેલા પ્રવીણ મિશ્રા સેન્ટરમાં કોને ગુરુદેવને और भगवान महावीर और मैं धन्य हूं आई एम सेटिस्फाइड मुझे कोई रुक रुक नहीं है कुछ भी हो जाए तो मैं कभी डिप्रेशन में जाता नहीं અમારા કને આવે જ કોની કોણ થકન જો ગુનો હોતો રહે મૂડ ઓફ એ મૂડ ઓફ આવે જ કોની મારા કને કેન્દ્ર મેં ગુરુદેવ હૈ કેન્દ્ર મેં ભગવાન હૈ તો વહાં યે આયેંગે કૈસે એ વિરથી કા ગાન ઇસલિયે કર રહા હું આપકે સાથ कि जो मेरे केंद्र में हो तुम्हारे केंद्र में पहुंच जाए जो सुधर्मा स्वामी के केंद्र में है वो विश्व के हर व्यक्ति के केंद्र में पहुंच जाए बस इतनी ही अरदास इतनी ही अर्जू 8 अक्टूबर को इसकी श्रुतदेव की भक्ति यात्रा और 20 अक्टूबर से The great, उस तीर्थंकर महावीर की अंतिम देशना अनुत्तर देशना की आराधना 7:30 to 9:30 बाजे किसने बजाने मैं यहां बजाता हूं मैं यहां बजाता हूं आपने वो गली गली में शोर मचाओ क्या गली गली में शोर मचाओ क्या 7:30 to 9:30 7:30 to 9:30 only one spot which spot उस वॉट नो प्रवीण ऋषि नो प्रवीण ऋषि वल्ली महावीर वल्ली महावीर और इसलिए वो प्रोटोकॉल है कि वंदना होगी नहीं जयकारा लगेगा नहीं नहीं यहां बैठा हूं तब मिला हूं है ना यहां बैठा हूं तब मिला हूं और सच में मैं बताऊं आपको यहां बैठता हूं तभी मिलने जैसा रहता हूं बाद में आप मुझे ना झेल पाऊंगे ना टिक पाऊंगे इसलिए वो कमरे में बंद वही ठीक है तो आइए इस आराधना के लिए स्वयं को समर्पित करें और विरथे की आज के आराधना के परिवार मुत्था परिवार और कटारिया परिवार ठाणा अभिजीत कुरियर है ना आधुनिक अभिजीत कुरियर हमारा तो अभिजीत कुरियर है कि नहीं आंध्र भी आधुनिक कुरियर अरे मिर्जा को तो अभिजीत आधुनिक कुरियर कौन बोलते हैं अरे मिर्जा में अभिजीत कुरियर है ना और इसलिए वो चितुंडी हो कि पुना हो कि कहीं पर भी हो उसके कुरियर में गया कि वो पहुंच गया बिल्कुल डिवोटेड परिवार और ठाणा के हमारे कटारिया परिवार दोनों का अभिनंदन और कल के लाभार्थी परिवार आ जाएंगे आगे सुनील जी वसंतलाल जी बोरा परिवार रोहित जी नवनीत जी चुत्तर परिवार
सरलाबाई, मनोज जी, महावीर जी, विशाल जी, सेठिया परिवार, आ जाओ फटाफट। आज के पचकान तब तक वो आते हैं। एकासन उगे सूर्य एक समय के उपरांत तीन आहार के पचकान स्वासनम खैमम सैमम सहसांगणम महत्ता गरेणम स्वसमयावत्यागरेण ओसरे ओसरे ओसरे। आज का एम्बिल उगे सूर्य एम्बिलम पचका में ले वाले वेनम सहसांगणम महत्ता गरेणम स्वसमयावत्यागरेण ओसरे ओसरे ओसरे। आज का उपवास उगे सूर्य बदरम बचका में तिविहम प्यारम स्वासनम खैमम सैमम सहसा गरेण महत्ता गरेण सो समय वत्यागरण ओसरे ओसरे ओसरे। और कल चार अक्टूबर के दो कार्यक्रम एक साथ, एक है कौन बनेगा कर्म विजेता, सीक्रेट ऑफ कर्मा के नेटा देता हूं, सीक्रेट ऑफ कर्मा की एक भव्य दिव्य प्रस्तुति जिसमें पार्टिसिपेंट से भी सवाल पूछे जाएंगे। 1 से 5 का वो कार्यक्रम चलेगा आनंद धाम पर, जिसको कंडक्ट कर रहे हैं आपके नगर के सर्वप्रिय प्रसाद जी बेड़ेकर, वो उसको कंडक्ट कर रहे हैं। तो सभी को आग्रह है कि तुम आप लोग सभी सहभागी हो सकते हैं। जो दर्शक आएंगे उनसे भी सवाल पूछे जाएंगे और जवाब के आधार पर उनको भी पुरस्कार दिया जाएगा। दूसरा कार्यक्रम है कौन बनेगा संघ विजेता है, उधर क्या है कौन बनेगा कर्म विजेता, और दूसरा कार्यक्रम है कौन बनेगा संघ विजेता। गुरुदेव के इस जन्म भूमि, दीक्षा भूमि और पुण्य भूमि, जन्म भूमि, दीक्षा भूमि और पुण्य भूमि, इन तीनों भूमि बनने का श्रेय किसी को मिला है तो अहमदनगर अहिल्या नगर जिले को मिला है। और गुरुदेव के सानिध्य में एक साथ अधिक से अधिकतम दीक्षा भी कहीं संपन्न हुई है तो भी अहिल्या नगर में। बाबू सीट उसके कमांडर थे, आज भी कमांडर है। ऐसे इस अहिल्या नगर को, अहिल्या नगर डिस्ट्रिक्ट को संगठन का केंद्र बनाने के लिए कल अहिल्या नगर जिला का श्रावक साविका युवक और युवती का एक सुंदर सा सम्मेलन का कार्यक्रम 9 बजे से लेकर तब 5 बजे तक अपना विरुद्ध का कार्यक्रम होगा, इसी समोसर में संपन्न होगा। इसके साथ चल रहे 3 कार्यक्रम, कपल शिविर भी चल रहा है 7:30 से 8:30, राइजिंग सन के भी बाबू सेठ पूछ रहे थे ना, एक कौन बैठे थे एक साथ कहां से आए। हाँ, जवानों को आगे बैठकर देख करके बाबू सेठ को खुशी होती है, ये सब राइजिंग सन वाले जयती थैर वाले है। उनका भी शिविर चल रहा है, अष्टमंगल का भी रोहन शिविर चल रहा है और 7 उपास के पचकान भी चल रहे हैं। आज के 7 उपास उगे सूर्य 16 मतम बच करते हुए प्यारम स्वासनम खयम सैमम सहसागरेणम महत्ता गरेणम सम समया वत्यागरण ओसरे ओसरे ओसरे। तीनों लाभार्थी परिवार आगे आएंगे। चलारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतोध मंगलम चला लघुत्तमा हरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमा चत्तारि शरणं भवज्यामि हरिहंते शरणं भवज्यामि सिद्धे शरणं भवज्यामि साहू शरणं भवज्यामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं भवज्यामि हरिहंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा दया धर्म का शरणा 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरना सुख करना और न शरणा कोई जो भव्य प्राणी करे आराधन अक्षय अमर पदोय खुशी संतोजी भटेवड़ा। आज के 7 उपास
उगेश्वरे सोलाभत्तम बजगतिव्यम प्यारं स्वसनम खनन सयनन सत्सांगरेणम महत्तांगरेणम समसमयावत्यांगरेणम ओसरे ओसरे ओसरे, ओसरे।